0: ऐका ना, तुम्ही पीएम सूर्यगर मोफत बिजली योजनेबद्दल ऐकलंय का?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: यामुळे तुमचं घर सूर्यघर बनतं, म्हणजे वीज बिल शून्य। आणि जास्तीची वीज तयार झाली तर ग्रीड ला विकून पैसेही कमवू शकता। मग बसलात काय, आताच रजिस्टर करा pmsuryaghar.gov.in वर।
2: हर घर सूर्यघर।
3: नमस्कार, मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ मन भावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग।
4: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं 90.8 FM रेडियो मन भावन पर कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि जब आप गहरी नींद में सपना देखते हैं तो उस सपने में दो लोग होते हैं, एक तो आप जो बिस्तर पर सो रहे हैं और एक वो जो सपने के अंदर भाग रहा है, डर रहा है, हंस रहा है। सपने में आपको सामने वाला व्यक्ति खुद से अलग लगता है, वहाँ दुश्मन अलग हैं, दोस्त अलग हैं और भगवान भी अलग हैं। लेकिन जैसे ही आपकी नींद टूटती है तो दूसरा इंसान कहाँ चला जाता है, वो दुश्मन, वो दोस्त, वो भगवान सब कहाँ विलीन हो जाते हैं। कबीर साहब आज इसी जागने के विज्ञान को समझा रहे हैं। वे बता रहे हैं कि जब तक हम सो रहे हैं तब तक दुनिया दो है, और जिस दिन जाग गए उस दिन सिर्फ एक ही बचता है। आइए जानते हैं कबीर की इस जादुई दुनिया का सच क्या है। कबीर सुपने रैनी के पारस जी में छेक, जो सोऊं तो दोई जना, जे जागूं तो एक। कबीर सुपने रैनी के पारस जी में छेक,

0: साधो जे जागू तोए। श्रोताओं, कबीर साहब कहते हैं, कबीर सुपने रैणी के, यह जीवन उस रात के सपने जैसा ही है। पारस जी में छेक, पारस यहाँ उस परम तत्व या उस अनुभव को कहा गया है जिसने मन को बींध दिया है, या एक ऐसा छेद, या एक ऐसा छेद कर दिया है जिसमें सच्चाई साफ दिखने लगी है। अब कबीर असली मर्म की बात कहते हैं, जो सोऊं तो दोई जना, जब तक मैं अज्ञान की नींद में सो रहा हूँ तब तक मुझे अलग अलग दिखते हैं। मैं अलग हूँ, तुम अलग हो, भक्त अलग हैं, भगवान अलग हैं, यह द्वैत है, यही संसार है। लेकिन जे जागूं तो एक, जैसे ही बोध हुआ, जैसे ही मैं जागा तो पता चला कि वह दूसरा तो कभी था ही नहीं। जो बाहर दिख रहा था वह भी मैं ही था, वह परमात्मा और मैं दो नहीं बल्कि एक ही चेतना के दो रूप थे। इसे ऐसे समझिए कि जैसे समुद्र की लहर को लगता है कि वह लहर है और समुद्र उससे अलग है, लेकिन जिस पल लहर शांत होती है उसे पता चलता है कि वह तो हमेशा से ही पानी ही थी। कबीर कह रहे हैं कि अज्ञान की नींद में हम खुद को परमात्मा से अलग मानकर भटक रहे हैं। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपने अलगाव को देखिए। हम क्यों दूसरों से नफरत करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि वे हमसे अलग हैं। हम क्यों डरते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि परमात्मा हमसे दूर कहीं बैठा है। आज कोशिश कीजिए इस एक को पहचानने की। अगर आप जाग कर देखेंगे तो आपको हर इंसान में अपना ही अक्स दिखेगा। जब दूसरा कोई बचता ही नहीं तो फिर नफरत किससे और डर किसका? कबीर हमें उस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं जहां पहुंचकर मैं और तू का फर्क मिट जाता है। आज अपनी आत्मा के आईने को साफ कीजिए और देखिए कि जिसे आप बाहर ढूंढ रहे हैं वह आपके भीतर ही आपकी सांस बनकर चल रहा है। जाग जाइए, क्योंकि जागने में ही आनंद है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मनभावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: करिअरची योग्य सुरुवात म्हणजेच उज्ज्वल भविष्याची पहाट, म्हणून आता आपल्या करिअरची योग्य सुरुवात करा KC इज ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च च्या विविध करिअर ओरिएंटेड कोर्सेसनी।
2: MBA, MCA सारखे PG कोर्सेस तसेच MCA इंटिग्रेटेड BBA, MBA, BMS, BCA सारखे UG कोर्सेस साठी प्रवेश सुरू, सोबतच 100% ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट असिस्टन्स। उत्तर महाराष्ट्रातील बेस्ट इन्स्टिट्यूट अवॉर्ड ने सन्मानित कॉलेज इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च, जिल्हा उद्योग केंद्रा मागे जळगाव।

0: ऐका ना, तुम्ही पीएम सूर्यगर मोफत बिजली योजनेबद्दल ऐकलंय का?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: यामुळे तुमचं घर सूर्यघर बनतं, म्हणजे वीज बिल शून्य। आणि जास्तीची वीज तयार झाली तर ग्रिडला विकून पैसेही कमवू शकता। मग बसलात काय, आताच रजिस्टर करा pmsuryaghar.gov.in वर।
2: हर घर सूर्यघर।
3: नमस्कार, मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।
4: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं 90.8 FM रेडियो मन भावन पर कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि जब आप गहरी नींद में सपना देखते हैं तो उस सपने में दो लोग होते हैं, एक तो आप जो बिस्तर पर सो रहे हैं और एक वो जो सपने के अंदर भाग रहा है, डर रहा है, हंस रहा है। सपने में आपको सामने वाला व्यक्ति खुद से अलग लगता है, वहाँ दुश्मन अलग हैं, दोस्त अलग हैं और भगवान भी अलग हैं। लेकिन जैसे ही आपकी नींद टूटती है तो दूसरा इंसान कहाँ चला जाता है, वो दुश्मन, वो दोस्त, वो भगवान सब कहाँ विलीन हो जाते हैं। कबीर साहब आज इसी जागने के विज्ञान को समझा रहे हैं। वे बता रहे हैं कि जब तक हम सो रहे हैं तब तक दुनिया दो है, और जिस दिन जाग गए उस दिन सिर्फ एक ही बचता है। आइए जानते हैं कबीर की इस जादुई दुनिया का सच क्या है। कबीर सुपने रैणी के, पारस जी में छेक, जो सोऊं तो दोई जना, जे जागू तो एक। कबीर सुपने रैणी के, पारस जी में छेक,

0: साधो जे जागू तोए। श्रोताओं, कबीर साहब कहते हैं, कबीर सुपने रैणी के, यह जीवन उस रात के सपने जैसा ही है। पारस जीव में छेक, पारस यहाँ उस परम तत्व या उस अनुभव को कहा गया है जिसने मन को बींध दिया है, या एक ऐसा छेद कर दिया है जिसमें सच्चाई साफ दिखने लगी है। अब कबीर असली मर्म की बात कहते हैं, जो सोऊं तो दोई जना, जब तक मैं अज्ञान की नींद में सो रहा हूँ तब तक मुझे अलग अलग दिखते हैं। मैं अलग हूँ, तुम अलग हो, भक्त अलग हैं, भगवान अलग हैं, यह द्वैत है, यही संसार है। लेकिन जे जागूं तो एक, जैसे ही बोध हुआ, जैसे ही मैं जागा तो पता चला कि वह दूसरा तो कभी था ही नहीं। जो बाहर दिख रहा था वह भी मैं ही था, वह परमात्मा और मैं दो नहीं बल्कि एक ही चेतना के दो रूप थे। इसे ऐसे समझिए कि जैसे समुद्र की लहर को लगता है कि वह लहर है और समुद्र उससे अलग है, लेकिन जिस पल लहर शांत होती है उसे पता चलता है कि वह तो हमेशा से ही पानी ही थी। कबीर कह रहे हैं कि अज्ञान की नींद में हम खुद को परमात्मा से अलग मानकर भटक रहे हैं। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपने अलगाव को देखिए। हम क्यों दूसरों से नफरत करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि वे हमसे अलग हैं। हम क्यों डरते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि परमात्मा हमसे दूर कहीं बैठा है। आज कोशिश कीजिए इस एक को पहचानने की। अगर आप जाग कर देखेंगे तो आपको हर इंसान में अपना ही अक्स दिखेगा। जब दूसरा कोई बचता ही नहीं तो फिर नफरत किससे और डर किसका? कबीर हमें उस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं जहां पहुंचकर मैं और तू का फर्क मिट जाता है। आज अपनी आत्मा के आईने को साफ कीजिए और देखिए कि जिसे आप बाहर ढूंढ रहे हैं वह आपके भीतर ही आपकी सांस बनकर चल रहा है। जाग जाइए, क्योंकि जागने में ही आनंद है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साथो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: करिअरची योग्य सुरुवात म्हणजेच उज्ज्वल भविष्याची पहाट, म्हणून आता आपल्या करिअरची योग्य सुरुवात करा KC इज ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्चच्या विविध करिअर ओरिएंटेड कोर्सेसनी।
2: MBA, MCA सारखे PG कोर्सेस तसेच MCA इंटिग्रेटेड BBA, MBA, BMS, BCA सारखे UG कोर्सेस साठी प्रवेश सुरू, सोबतच 100% ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट असिस्टन्स। उत्तर महाराष्ट्रातील बेस्ट इन्स्टिट्यूट अवॉर्ड ने सन्मानित कॉलेज इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च, जिल्हा उद्योग केंद्रा मागे जळगाव।